पास खने खने अधर आगे करो बास चौकी चले खने खने चलू मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खनिया चर।

चलु मंद मनमथ पाठ पहिला अनुबंध हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर खनिया चरित।